0: 94175 4372643175 ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰਤੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੋ ਜੀ 437-264-3175 4372643175
1: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ
2: यार एक बात बता तू इतने सारे बॉयफ्रेंड हैंडल कैसे कर लेती है
3: लड़कों को हैंडल करना कौन सा मुश्किल काम है लड़के तो होते ही हैं बेवकूफ
2: देख राज तेरे साथ इमोशनली अटैच हो और अगर उसे पता चला ना तो मुश्किलें पड़ सकती है
3: इसकी चिंता छोड़ मुझे पता है किसकी क्या जगह है और किसे कहाँ रखना है

0: तो इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
1: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
0: तुम्हें ये सब कैसे पता?
1: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
0: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
1: saveonenergy.ca/eap।

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: क्या बात है जी 8177 हेलो
2: हां
1: जी सतश्रीकाल जी कि हो
2: चलो
1: ठीक है और सुनाओ
2: मैं कहना सी जेडे अपने पुराने डैडी दादे उन्होंने जनरेशन थी ना वो ज्यादा ही करती सी चीजा चीजा।

0: 630 CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब ते अमीर विरसे दी पुक्कल चो यादां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
0: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
3: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाक अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: शादी दी मूवी बनवाउन लई या रिंग सेरेमनी लई वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट करन लई याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग लई आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-903-1251 416-930-1251।
1: ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਚੰਗਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ?
2: ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ। 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ।
0: ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
2: 416-717-2929
0: 416-717-2929। ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ, 14 ਸਟੇਨਵੇ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਯੂਨਿਟ 4, ਇਟੋਬੀਕੋ।
3: मिलना इवेंट्स लेके आ रहे ने तुहाटे वास्ते रू का सफर टूर। जी हाँ, लाइव मास्टर सलीम कॉन्सर्ट इन टोरंटो 24 जुलाई नो मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच।
4: मैं के अचन जी सलाम तीने आ।
3: सिर्फ ते सिर्फ मिलना इवेंट्स दे नाल। ता फिर देर किस गल दी, तारीख नोट कर लो 24 जुलाई। अपनी टिकटा अज ही बुक करो। लॉग ऑन करो www.milnatickets.com ते। स्पॉन्सरशिप अते होर किसी भी जानकारी लई तुसी रोहन शर्मा अते प्रभ संधू नू कॉल कर सकदे हो 647-783-9873 या 437-870-0001 ते।

0: du bist ein Job, Assas, du Assas, Hebises, Nadet, Hose, Bises, Bole, Sony Hall, Sassier Karl.
1: मम्मी पापा दे वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते बंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है
2: शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है
3: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल
4: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
3: 416-917-7763 416-917-7763 Life insurance, visitor insurance, super visa insurance, critical illness, disability insurance, RESP, travel insurance, convert expensive mortgage insurance to term insurance.

0: Poncho, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600. Hello, bro. Kithe hai tu?
1: Main client nu milan ja rahe hain. Soch rahe si Tim Hortons ch baith jaiye.
0: Oh, yaar. Ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiya chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao unna nu. Private booths ne full privacy mildi hai. Free Wi-Fi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadiya.
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
0: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी कॉल करो 905-451-2600 905-451-2600

0: नजारा आ गया हुए। जल्दी पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600।
1: मेरी पहली पसंद।
2: I love it।
3: मैं तो सवेरे सुने बिना रह ही नहीं सकती।
1: हम सबकी पसंद
4: रेडियो आवाज।
1: एवरी मॉर्निंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9 to 10 एंड सैटरडे 10 to 1 ऑन AM 530। नॉन स्टॉप कॉल्स, नॉन स्टॉप टॉक्स। प्रमोट योर बिजनेस विद अस। कॉन्टैक्ट 416-518-3200।
5: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे। कितनियां तरकीबां लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
6: निर्बल बाबे ने कहा से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
7: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
8: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
9: रेडियो आवाज,
10: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: नानक डकले नहीं 416-729-1521 416-729-1521। सोडी साहब लास्ट कॉल ऑफ द शो, सोडी साहब जी, मजीद जी,
1: लिखनी आउंदी सी ना पढ़नी आउंदी सी, बोलदे तां चलो पंजाबी परवाह चाहे तां, पर पंजाबी सिखी किदां आ उड़ा अड़ा नहीं सिखिया। इत्थे अखबार लै के बह जांदा सी किसे दे नाल, पुछ पुछ के आ केड़ा अखर आ केड़ा।
0: मतलब मैं कोशिश करूं बच्चा पढ़ने का कंपीटिशन करूंगा, हर साल मैं दो शो बच्चों के कर दिना जी, एक स्टूडियो च एक आउट ऑफ स्टूडियो। इन्हों बाहर सफाई सफुई करनी सिखाने, सड़कां किवें क्लीन रखनियां, आस पास के लोगों ने किवें मिलना वरतना, पूरी ट्रेनिंग दे दी है जिन्हां नूं असीं आ दिनां च हुण रखांगे, ओपनिंग करांगे। क्यों अगमदीप, ठीक है?
2: हां जी ठीक
0: है। याद आ तैनूं पिछले सारे शो आपां जिहड़े कीते सीगे?
2: हां जी।
0: सो असीं अक्की फिर करांगे, बच्चे दे नां रेडी रखियो ते बड़ा वधिया होगा। मंजीत जी थैंक यू सो मच तुहाडा कॉल करन लई। मेरे नाल ज्योति है, ज्योति कैसे हैं आप? ज्योति कैसे हैं? ज्योति
3: हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, आई एम वेरी गुड, आप कैसे हो?
0: मैं अच्छा हूँ। अगमदीप याद है तुहाडे घर दे आसपास फुल लगे हुए ने, बहुत सारे फ्लावर्स ने?
2: हां जी जी।
0: इन्हां दी आंटी दी नर्सरी चो लेके आए सी, याद है?
2: हां जी।
0: याद है ना, पूरा ट्रक भर के लेके आए सी, याद है?
2: हां जी।
0: सो सारे ने पहुंचना ग्रीन वैली गार्डन सेंटर, एक ऐसी थां, एक ऐसी जगह जो थोड़े घर नूं एदां दा बना दूगी कि तुसीं प्राउड फील करोगे, स्ट्रीट ते नंगे करोगे कि मेरा घर है। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਜੋਤੀ ਕੁਇਕ ਰੱਖੇਂਗੇ, ਛੋਟਾ ਰੱਖੇਂਗੇ, ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹਦੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਨੀਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਫਰੂਟ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ। ਜੋਤੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼।
3: हाँ जी, ग्रीन वैली गार्डन सेंटर जरूर आना, जिस सारे पेरिनियल जो हर साल आने वाले जो फ्लावर्स है वो हमारे पास वैरायटीज ऑफ प्लांट्स है, उसके साथ दरख्त जो आप बोल रहे हो, सारी फ्रूट्स की अलग अलग वैरायटीज के ट्रीज है, शेड वाले ट्रीज है, मेपल है, ओक है, फूल वाले भी ट्रीज है, जैसे हाइड्रेंजिया के ट्रीज की वैरायटीज है, और जो जासवंदी बोलते हैं उसके भी अलग अलग टाइप के हमारे पास बड़े बड़े ट्रीज अवेलेबल है। सो प्लीज ग्रीन वैली गार्डन सेंटर आओ, और आपकी पूरी गार्डन नीड्स हम कंप्लीट करेंगे, अलोंग विथ पूरा नॉलेज भी देंगे, आपको बताएंगे भी कहाँ कौन सी चीज लगाने से अच्छी आएगी, अच्छी दिखेगी। आप बस आपके गार्डन के पिक्चर्स लेकर हमारे पास आ जाओ और हम आपका गार्डन फूलों से भर देंगे, और ट्रीज की छाया में आपको बैठने का भी मजा आ जाएगा। कुछ सालों में आप देखोगे और बोलोगे कि नहीं, ग्रीन वैली गार्डन सेंटर का ये कमाल है।
0: सो ग्रीन वैली गार्डन सेंटर, तुसी फोटोज दो अपने घर दियां, बैकयार्ड फ्रंट यार्ड दियां, सजाउणा इन्हां दा कम है। फुल ओ वाले जिन्हां नूं संभालण दी जरूरत नहीं, अपने आप दोबारा आई जाणगे ते नवें बीज खिंड के होर फुल वधी जाणगे। फुल्लां नाल प्यार करो, धरती नाल प्यार करो, पानी नाल प्यार करो ते हवा नाल प्यार करो। सो ग्रीन वैली गार्डन सेंटर आओ, स्पेशल डील्स ने तुहाडे वास्ते, दूर दूर के शहरों तो लोग आ रहे हैं, वर्थ टू ड्राइव। ग्रीन वैली गार्डन सेंटर 647-222-5601 647-222-5601। शाम को कितने बजे क्लोज करते हैं हम?
3: 7 PM।
0: 7 बजे तक
3: खुले, 7 PM।
0: हाँ जी, शाम के 7 बजे तक खुले ने। 647-222-5601। दो लोकेशन ने, मकवीन एंड मेफील्ड, दूसरी है एम्बलटन एंड हेरिटेज रोड। थैंक यू सो मच। 647-222-5601 ABS ऑटो कलिजन, कैम्ब्रिज किचनर वॉटलू कैम्ब्रिज के एरिए या लंडन के गड्डी एक्सीडेंट होगी, गड्डी की सांभ संभाल दे लई तुसी ABS ऑटो कलिजन 416-520-1946 416-520-1946 के उत्ते ABS ऑटो कलिजन में कॉल करोंगे। और HSP कंस्ट्रक्शन, जगजीत सिंह नाम है, घर की एक्सटेंशन, घर च वॉशरूम ऐड कर रहे हैं या बेसमेंट या थर्ड यूनिट घर रेंटल तैयार करना है, थर्ड यूनिट HSP कंस्ट्रक्शन स्पेशलाइज करते हैं। 416-671-0709 416-671-0709। किचन चेंज करवानी है, किचन का कोई भी काम करवाना, एटलस किचन

0: 742 7478 7478 7478 RSG कस्टम सोफा एंड अपोस्ट्री, पुराने सोफे नवे बनाओ, कस्टम सोफे तैयार कराओ, RSG अपोस्ट्री ना हाथ मिलाओ। तुसी फ्री एस्टीमेट लो, कस्टम सोफा कस्टम बेड 647 705 13 17 अशोक सैनी CPSE जी ने 905 458 13 99 क्वीन एंड एयरपोर्ट के इंटरसैक्शन से तुसी कॉल करनी है। किसी को भी करजा हैगा, करजा माफ करवाना अपना 416 518 3200 416 518 3200 और ट्रिपल ए लैंडस्केपिंग प्लाजा ते ट्रकों के यार्ड दी तुसी लैंडस्केपिंग 647 784 12 13 ते कॉल करोगे ते मास्टर योर एग्जाम। रियल स्टेट का एग्जाम पास करना, मोरगेज का, रीपो का, कार डीलरशिप का या कार की इंश्योरेंस का 437 376 5656 43
1: Another Don clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Don Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Don Platinum, the better grease getter. This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
1: देखा अज एसी की लौड़ तो पैनी है, सो बड़ा ये सोंग वधिया वैसे, चलो स्ट्रीट डांसर का है ना। तो लो जी हूँ मैं थोड़ा नंबर एक होर देव, यह हैगा जी सगनदीप का नंबर। वधिया सोफे जो तुम बनाने हैं ना, तो सगनदीप नू करनी है कॉल। सगनदीप

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap

0: गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करते हैं तुहाडा अज दा इह गर्म जिहा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। 1 बजे तो बाद गीत संगीत का प्रोग्राम भी होंदा है, सुखी निजर साहब वतनों दूर अगे चल के 1 बजे तुहाडे लई पेश करनगे। सब तो पहला छतरी छाता रिपोर्ट हाजर है। अज सूरज सिंह 548 ते सवेरे आया, शाम नूं 857 दे चले जाना। वो पंडित कन्नो फड़ के लियाओ जिहड़े कहिंदे चंदा रात नूं निकलदा। सवेरे 539 ते आया ते रात नूं 941 ते जाना, सारा दिन चंद्रमा चमकदा रहेगा। अज तापमान तकरीबन 42 डिग्री रहेगा। It's gonna feel like 47 degree. सारा दिन सूरज चमकेगा, कल नूं सूरज चमकेगा। टेम्परेचर गोना बी 35 डिग्री, इट्स गोना फील लाइक 38 डिग्री। थर्सडे नूं 33 डिग्री तापमान होएगा, इट्स गोना फील लाइक 37 डिग्री। फ्राइडे नूं 30 डिग्री तापमान होएगा, इट्स गोना फील लाइक 33 डिग्री। सैटरडे नूं सारा दिन बदलवाई नाल छतरी छाता दी लोड पेगी, तापमान 26 डिग्री। संडे नूं 28 डिग्री तापमान रहेंगे। अज दे प्रोग्राम नूं सहयोग दिता है गोल्डन लाइन ट्रैक्टर वाले वीरां ने, जिथे कि कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर तो तुसीं लै सकदे हो। बड़े भरोसेमंद ट्रैक्टर ने, बाय द वे इंडिया तो बन के आए ने। ये लोडर दा काम करदे ने, लैंडस्केपिंग कर सकदे हो। तुसीं घाह घू कटना है 2-4 एकड़ जो तुहाडा मकान है वह कर सकदे हो। लोडर ला सकदे हो, स्नो ब्लोअर ला सकदे हो, स्नो ब्लेड वर्गे अटैचमेंट भी मिलदे ने। फाइनेंसिंग मौके ते है, गल ही कोई नहीं। तेज भाई नूं फोन कर लो 647-622-1754।
1: क्रिमिनल डिफेंस लॉयर स्टैटन लॉ प्रोफेशन कॉर्पोरेशन दे करणदीप साही। फेल हियरिंग, ड्रंक ड्राइविंग, घरेलू झगड़ा, चोरी दा केस या कोई भी कानूनी उलझन च फंसे होवो, तुहाडा अपना क्रिमिनल डिफेंस वकील स्टैटन लॉ प्रोफेशन कॉर्पोरेशन दे करणदीप साही। जाने अनजाने विच होए जुर्म लई तुहाडे हक लई तुहाडे नाल खड़े ने। मेफील्ड एंड एयरपोर्ट, कॉल 647-871-5000, 647-871-5000।
2: Culture of Punjab is sponsored by Airport Nissan. For the best deals in Brampton, come to Airport Nissan at the corner of Airport Road and Queen Street, or call 905-791-4900. Culture of Punjab, serving the South Asian community in and around the GTA. For exciting packages, promotional offers, and inquiries, please call 416-677-0609. That's 416-677-0609. Culture of Punjab.
0: Are you ready? जंक्शन लई 647-429-4040। केटरिंग करानी है छोटी वड्डे फंक्शन लई, नो प्रॉब्लम 647-429-4040। लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम 647-429-4040। तुसी नारे बैंकुएट हॉल या लॉन्ज में छोटी वड्डी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम 647-429-4040। 647-429-4040। 647-429-4040।

0: ਲਵਲੀ ਲਵਲੀ ਚ ਪੜਦੀ ਪੀਓ ਚ ਜੰਟ ਪੜਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਲਵਲੀ ਲਵਲੀ ਚ ਹਵੇ ਮੈਂ ਲਵਲੀ ਲਵਲੀ ਚ ਪੜਦੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਤਨੋ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਖੀ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: मित्रां दे जंक्शन ते
0: हो केड़े जंक्शन ते
4: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते
3: रात लगियां महफलां रे
4: भाई महफलां ते रोज ही लगदियां ने इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकेट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM to 6 PM drinks 50% off। Tikka Junction Brampton te call karo 6474944047429 4040। Tikka Junction Brampton।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशन तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको रौला पै गया। टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल दाले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडोवर्ड पार्कवे ईस्ट दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566 नोबेल फ्रेश फूड।
2: एक लाइफ है जिसे लव है
3: ये कहते मुझसे सब है
4: और एक घर है जिसका ड्रीम है

0: चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल्स।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड

0: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार।
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
2: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
1: 416-509-1509
2: और विजिट

0: 7-94-8-111, 905-794-8-111। दूसरी लोकेशन 85 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव के उपर है। नंबर 905-593-4400, 905-593-4400। तो तीसरी लोकेशन 15 फेंडर वे बवेड एंड चिंक्यूजी के इंटरसैक्शन से है। नंबर 905-840-2200, 905-840-2200। सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट्स से नंबर्स ने। चलो फिर छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेने, स्टेशन आईडी तो बाद जल्द वापस आवेंगे। सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
1: ਸਸਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਔਰ ਹਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੱਤ ਸ਼ਿਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੂਟ ਲੈਂਡ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਦੀ ਤੰਦੂਰੀ ਗ੍ਰਿਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ ਹਰ ਫਰੂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਹ ਮੀਟ ਵੀ ਔਰ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਮੀਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਓ, 45 ਡਸਕ ਡਰਾਈਵ 15 ਫੈਂਡਰ ਵੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9985 ਮਕਵੀਨ ਡਰਾਈਵ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1465 ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 33 ਫਾਰਲੀ ਡਰਾਈਵ ਗੋਆ और 600 हैस्कुलर रोड कैम्ब्रिज, नमी खुली ब्रांच 25 सेंट्रल बुड पार्क वे कैनेडी के सेंट्रल बुड पार्क में नेड़े आओ। हरिया ताजिया सब्जियां और जी सस्ती ग्रोसरी वास्ते पहुंचो इंडियन फ्रूट लैंड से। चलो एम 530 तो तुसी सुन रहे हो अपना हरमन प्यारा रेडियो प्रोग्राम।
2: की तुहानू इलेक्ट्रिशियन दी लोड़ है, सानू हाई रिस्क इलेक्ट्रिकल ते कॉल करो। हाई रिस्क क्यों? क्योंकि साडे कोल लाइसेंस नहीं है ते सी इलेक्ट्रिकल परमिट नहीं लेंदे। जाने की तुसी पक्का नहीं कह सकते कि साडा काम किन्ना कु सुरक्षित जां कानूनी है, पर एक गल पक्की है कि जदों भी असीं आवांगे असीं तुहाडा टॉयलेट जरूर वरतांगे। इसलिए हुणे कॉल करो, असीं वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं अग नहीं लगेगी। शायद
3: अपने परिवार की रक्षा करो, सिर्फ लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो अते यकीनी बनाओ कि ईएसए परमिट हासिल करन। होर जानन लई highlicense.ca ते जाओ। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा।
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
8: Hey, you are the cockroach, me. Listen to me.
9: छोटे
10: तो छोटे घर तो लेके बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स।